देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।

की चाह है जहां बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वही आशिया बनाने की। रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आपकी जिंदगी आपकी आवाज। और आप सुन रहे हैं सुकून म्यूजिकल स्टूडियो प्रस्तुत संगीत का असर, सुकून का सफर। आइए आज का पहला नगमा हम लोग सुनते हैं, अजनबी कौन हो तुम, गुरमीत दरिया नानी की आवाज में स्वीकार किया तुमने, और लता मंगेशकर जी ने यह गाया हुआ सॉन्ग है, काफी रोमांटिक सॉन्ग है। आइए आज की पहली पेशकश रोमांटिक सॉन्ग से करते हैं।

आप इसी तरह बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आइए हम अगली सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। अगला सॉन्ग हम लेकर आ रहे हैं, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। किशोर कुमार जी ने गाया हुआ ये सॉन्ग है। 1975 में ये फिल्म आई थी, जमीर फिल्म का ये सॉन्ग। लेकर आ रहे हैं विजय माली जी।

0: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। जिंदगी की रफ्तार भले ही स्लो हो या तेज, पर जिंदगी चलती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो संगीत के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो श्रोता हो या सिंगर, तो वो अपने आप में उन्हें मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो संगीत के साथ जुड़ जाता है वो ऑटोमेटिक मेडिटेशन कर लेता है।
1: आप सभी को बता दूं कि 3 अक्टूबर को सुकुन म्यूजिकल स्टूडियो लेकर आ रहा है गुरुदक्षिणा हॉल में धुरंधर 2। गीतों का बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है अपने नासिक में, और नासिक वासियों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को उपस्थिति देना ना भूले। 3 अक्टूबर शाम को 6 बजे गुरुदक्षिणा हॉल कॉलेज रोड पर। आइए अगले सॉन्ग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली पेशकश लेकर आ रहे हैं प्रवीण जी पाटिल, जीवन के सफर में राही। मुनीर जी फिल्म का ये सॉन्ग 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और किशोर कुमार जी की आवाज़, एस जी बर्मन जी का संगीत और देवानंद साहब और नलिनी जयवंत के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। आइए हम लोग सुनते हैं प्रवीण जी पाटिल की आवाज़ में जीवन के सफर में राही।

ही बेहतरीन पेशकश परमजी पाटिल जी ने हम सभी के सामने दी है। श्रोताओं, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हमें मिलते हैं उस कमेंट से हमारा और सिंगरों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है और आपका प्यार, आपका सराहना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपके इस प्यार के लिए, आपकी सराहना के लिए मैं शुक्र म्यूजिकल स्टूडियो की ओर से और रेडियो विश्वास की ओर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आपकी जिंदगी आपकी आवाज, सुकुन म्यूजिकल स्टूडियो प्रस्तुत संगीत का असर, सुकुन का सफर, ऐसे ही नगमे को आप सुनते रहिए। और आपकी भी अगर कोई फरमाइश है तो आप 9373413189 आरजे गोपाल के नंबर पर कॉल करें और अपने कमेंट्स और जो भी आपकी फरमाइश है वो हमें जरूर जरूर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना ही रेडियो विश्वास और सुकुन म्यूजिकल स्टूडियो का काम है। तो आपकी फरमाइशें आप हमें बताते रहिए ताकि बेहतरीन नगमे, बेहतरीन सुरों के साथ हम आपके सामने हर शुक्रवार को लेके आते रहें। यह सिर्फ शुक्रवार को ही 3 बजे नहीं होता है, बल्कि इसे संडे को भी, रविवार को भी दोपहर को 3 बजे सुनाया जाता है। तो शुक्रवार और रविवार को सुनना ना भूलें। रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आपकी जिंदगी आपकी आवाज, सुकुन म्यूजिकल स्टूडियो प्रस्तुत संगीत का असर, सुकुन का सफर। आइए हम लोग अगली पेशकश सुनते हैं। अगला गीत लेकर आ रहे हैं प्रवीण जी पाटिल और उनका साथ दे रही है गुरमीत दरिया रानी। फिल्म का नाम है काला पानी और गीत है अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और जैसे हम देखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी जी और आशा भोसले, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर होता है, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेहतरीन होता है। कुछ ऐसा ही कोऑर्डिनेशन आपको इस गीत में देखने के लिए मिलेगा प्रवीण जी पाटिल और गुरमीत दरिया रानी जी का। तो आइए सुनते हैं फिल्म काला पानी और गीत के बोल है अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना।

0: मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? क्योंकि जुदाई ना होती तो मुलाकातें कहाँ से होती। और इसीलिए दोस्तों मैं शुक्रवार से लेकर अगले शुक्रवार तक आपसे जुदाई ले लेता हूँ ताकि फिर मुलाकात हो सके। फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार को इसी वक्त दोपहर 3 बजे। तब तक आप बड़े सुकून से गाते रहिए, सुकून से सुनते रहिए और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना, यही हमारा उद्देश्य। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नमस्कार।
1: धंदा आहे, रोजचा कॅश फ्लो आहे, मग घ्या विश्वास बँकेचे अनसिक्युअर्ड बिझनेस लोन व्हाया डेली कलेक्शन। रुपये 5 लाखांपर्यंत कर्ज, मुदत 3 वर्ष आणि रुपये 1 लाखासाठी रोज फक्त 108 रुपये। अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेला अवश्य भेट द्या किंवा कॉल करा 9130002088। रोज थोडं भरा, व्यवसाय मोठा करा। कॉल करा 91300208888।
2: हर रोज जब सूरज गुरूब होता वो उसी पुल पर खड़ी उसका इंतजार करती, लेकिन वो नहीं आया। एक बार फिर जिंदगी का हाथ उसकी उंगलियों से छूटने लगा। सनसेट के रंग भी कितने कच्चे होते हैं।